एक से बढ़के एक खिलाड़ी, लाल कुल्हाड़ी काली पहाड़ी, मोटा सेठ लोहे का गेट, हो गई भोर भागा चोर, नाचा मोर मच गया शोर।

के फैंस उसे आधा रॉबिन हुड मानते हैं, क्योंकि वो अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता कुछ नहीं।

हाँ, मेरा दिल कह रहा है मैं सर से लेके पांव तक तेरे संदली बदन पे मोहब्बत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है मैं तेरे सुर्ख नरसते होठों की लाली पे अपने लबों की शबनमी शरारत लिख दूं। हाँ, मेरा दिल कह रहा है तेरी पाजेब की झंकार पे, तेरे बाहों के चंदन हार पे अपनी बेचैनियों की हालत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है तेरे उलझे गेसु सवर इन आंखों के आईने में तेरा दुल्हन सा रूप निहार, इस महकती जमीन की सेज पे अपने अरमानों की चाहत लिख दूं, मोहब्बत लिख दूं।

दीवाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं फिर मिलते हैं जेल खाने में।